अरे हम भी चले गए तो मोहब्बत करेगा कौन। इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुझे बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी
3: खरीदारी की वापसी हम मान सकते हैं या अभी लग रहा है कि कुछ और स्थितियां हैं?
4: देखिए, मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में है, और सेकंड जो आज की एक खरीदारी की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे पॉजिटिव्स हैं। एक तो क्रूड के प्राइसेस थोड़े से स्टेबल हुए हैं, बहुत ही एस्केलेशन जो हम देख रहे थे तो शायद उसमें कुछ ऐसा पॉज यहाँ पे आए, तो जिससे एक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो थी वो भी थोड़ा कम हो जाती हैं जब क्रूड के प्राइसेस में थोड़ी गिरावट आती है। और दूसरा जो हमने देखा, जो हमारी कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया है। पीछे के कुछ सेशन जो है हमारे काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं, बीच में भले ही कुछ वॉलेटिलिटी तो जरूर रही है, लेकिन ओवरऑल जो सपोर्ट है फंडामेंटल सपोर्ट के अलावा जो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं कॉरपोरेट अर्निंग को लेके, और दूसरा जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर जो हमने काफी फोकस किया, और हमारे एक्सपोर्ट के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, 13% से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है
3: जी।
4: तो इन सब चीजों के मद्देनजर जो मार्केट की मजबूती है वो काफी अच्छी है पिछले कुछ महीनों से। भले ही वॉलेटिलिटी रहती है, जब भी कोई ग्लोबल डेवलपमेंट होती है तो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट के ऊपर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है। अब कल कोई और कुछ नेगेटिव का कोई न्यूज आ जाए तो मार्केट में फिर एक गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल जब भी मार्केट में कुछ भी ग्लोबली कुछ पॉजिटिव होता है तो मार्केट स्ट्रांगली रिबाउंड करती है। ये एक इंडिया की मार्केट की एक स्ट्रेंथ है, जो जहां से हमें पता चलता है कि डोमेस्टिकली वी आर वेरी स्ट्रांग बट चैलेंजेस आर फ्रॉम दी ग्लोबल साइड।
3: इसमें आपको ये लगता है कि निवेशकों का एक ट्रेंड बदल रहा है, उनके सेंटिमेंट्स भी काफी तेजी से बदलते हैं इसके साथ में?
4: बिल्कुल, उसमें क्या है कि मार्केट का अगर हम बिहेवियर देखें पीछे के 4-5 महीनों का, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है ईरान में और यूएस में, तो मार्केट में कोई ऐसी करेक्शन जो डीप करेक्शन जाके जहां पे मार्केट वहीं पे सेटल हो जाए ऐसा नहीं देखा गया। मार्केट ने रिकवर किया है। मार्केट जब भी उसको मौका मिला तो मार्केट ने स्ट्रांगली रिकवर किया, तो कुल मिला के जो गिरावट है वो उतनी ज्यादा नहीं है कि हम देखिए
3: ओवरऑल
4: जो ओवरऑल निफ्टी था वो 25,000 से ऊपर था, तो अभी हम देखते हैं कि निफ्टी 24,000 के आसपास ऑन एन एवरेज रहता है, प्लस माइनस 23,500 से 25 तक भी चला जाता है। तो ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट में कोई ऐसी डिसेलरेशन आई हो और मार्केट जाके 22,000 पे सेटल हो जाए और वहां से फिर रिकवरी का नाम ही ना ले, तो वहां पे हम देखते हैं कि बहुत ही कुछ नेगेटिव है हमारी अर्थव्यवस्था में, कुछ नेगेटिव है, हमें हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अभी मार्केट भले ही कोई करेक्शन आती है तो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांगली रिबाउंड भी करती है, तो जो इसका एक दायरा है जो जैसे मैंने बताया 23,500 से लेके 25,000 के बीच में ये पिछले 5-6 महीने से उधर ही अपना एक रीच बाउंड।
5: सर डॉक्टर शर्मा, विच डोमेस्टिक ट्रिगर्स मैटर द मोस्ट टुडे, द FII और DII फ्लोज और द रुपी स्टेबिलिटी और सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज?
4: देखिए, इसमें लेख साहब मेनी डेवलपमेंट्स लाइक अवर फर्स्टली द इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, लाइक द क्रूड इज नाउ डिसेलरेटिंग, नॉट गोइंग सिग्निफिकेंटली अप, एंड सेकंड इज द फंडामेंटल फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स एंड फ्रॉम द IIP नंबर्स, सो रिसेंट मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग, एंड थर्डली एज आई सेड द कॉरपोरेट अर्निंग्स आर वेरी सपोर्टिव, एंड फोर्थली सम स्टेबिलिटी इन दी FII इनफ्लोज ऑल्सो, दे आर द नेट बायर्स, एंड DII इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग स्ट्रांगली एंड देयर इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द FIIs, सो ऑल दीज फैक्टर्स आर सपोर्टिंग द मार्केट बिकॉज मार्केट स्ट्रेंथ इज शोइंग अ ग्रेट रेजिलियंस डिस्पाइट मेनी हेडविंड्स एट द ग्लोबल लेवल, लाइक वेरियस नेगेटिव न्यूज फ्रॉम ईरान एंड यूएस साइड रिगार्डिंग देयर ongoing war, but markets remains strongly resilient and behaves in a very positive way when there is some positive news at the global level.
5: Okay, I have two sector related questions to you. How exposed are Indian IT and pharma to any US slowdown or policy shifts? Also, the PSU banks and financial, will they remain the index

0: infrastructure, providing an interoperable real-time payments platform. The UPI has surged almost 13,000-fold in transaction volume. Finance Ministry said that the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore to nearly 314 lakh crore during the same time period. Dr. Sharma, this is interoperable and it is a real-time payment platform, which is a great success, and other countries too have kind of expressed interest in it.
1: Yes, Lake Saab, this is a great development, and we are global leader in the digital transaction supported by the UPI. And as you rightly said, there is a 13,000-fold surge in the UPI transactions. That is a great number. We are now globally recognized. UPI has emerged as a global platform for cross-border digital payments also, and is currently operational in 11 countries, namely United Arab Emirates, France, Bhutan, Sri Lanka, Nepal, Singapore, Mauritius, Qatar, Cambodia, Greece, and Maldives. So this is becoming now a robust system for our global transactions and supporting our economy significantly. So digital contribution in our economy is now becoming significantly strong on the back of these developments in the recent years.
2: आगे बढ़ते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना है. इसके अलावा निवेश संबंधों को गहरा करने और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा. वित्त मंत्री मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ एक निवेश गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे. एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 0.7% बढ़ा और जापान का निक्केई 225 आधा प्रतिशत ऊपर आकर बंद हुआ. एशियन मार्केट में आज बहुत ज्यादा हमने उथल पुथल नहीं देखी, क्या कारण इसके रहे होंगे?
1: वही जो मैंने बताया कि एक तो क्रूड में थोड़ी स्टेबिलिटी देखी गई है, और दूसरा जो एक पीस प्रोसेस की बात होती है कई बार, जो उसको देख के भी, क्योंकि मार्केट्स अभी एक पीछे काफी महीनों से हमने देखा कि बहुत ही कंफ्यूज्ड मोड में है. मार्केट को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है. तो दैट्स व्हाई जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट है जैसे काफी एशियन मार्केट्स में, वो बहुत कम हो गया है. जैसे हमारा इंडिया के उसमें हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है जब भी कोई पीस प्रोसेस आती है, लेकिन काफी मार्केट्स ऐसी हैं कि उसमें कोई ऐसा प्रोसेस भी होता है तब भी वो स्टिकी जोन में ही रहती हैं, उनमें कोई मेजर प्रभाव देखने को नहीं मिलता. तो ये भी एक कारण है.
0: Moving on, the United States has imposed sanctions under Operation Economic Outcast on nearly 60 entities, individuals and vessels over their alleged links to Iran's military activities, procurement networks and petroleum and petrochemical trade. In a fact sheet released by the U.S. State Department, the measures aim to further expose individuals and entities that enabled strikes against U.S. forces and allies, and to restrict the revenue that the Iranian regime uses to attack its neighbors, support terrorism abroad, brutally oppress its own people, and hold the global economy hostage. Very briefly, how do you think India should react to such an Operation Economic Outcast, or how will the world at large react to the Operation Economic Outcast, and what repercussions could it have on the world economy?
1: Repercussions can be in the financial markets, and because financial markets are already very volatile since the last many months or quarters. So going forward, we have to watch carefully the developments in the financial markets and stability about the exchange rate movements particularly, so that the fundamentals of the economy are not impacted or face such kind of repercussions.
2: Yeah. आगे बढ़ते हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए उसके पास 2 साल की योजना है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की घोषणा करते हुए इसे आर्थिक डी डे बताया है। वहीं ईरान के वित्त मंत्री अली मदनी जादेह ने कहा कि उनका देश इन कदमों के लिए तैयार है और उसके पास जवाब देने के अपने साधन हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो क्षेत्र से तेल का निर्यात रोक सकता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग हॉर्मुज जल डमरों मध्य से जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकता है। एसपी, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनका कैसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पर, खासतौर पर ऐसे समय में जब भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं और ऑयल्स के जो प्राइसेस और तेल की जो कीमतें हैं उनमें भी उतार चढ़ाव देखने, कभी बढ़ रहे कभी गिर रहे, भारतीय बाजारों को कैसा असर इस पर देखने को मिल सकता है?
1: देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनसे वॉलेटिलिटी बहुत क्रिएट होती है, मार्केट्स वॉलेटाइल हो जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो अभी तक हमने नतीजा देखा है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि हमारी मार्केट है स्टेबल है, मार्केट में मतलब ऑन एन एवरेज जो है स्टेबिलिटी दिखाई है, कोई ऐसी डीप डिसेलरेशन नहीं आई जहां पे मार्केट जाके सेटल हो गई हो, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा नुकसान हुआ हो, मार्केट ने रिकवर ही ना किया हो, तो मार्केट हमारी रिकवर करती है। ये जो वॉलेटिलिटी है, कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आती है, कभी नेगेटिव आती है, तो इनकी वजह से मार्केट में उतराव चढ़ाव जरूर है, लेकिन एक जो प्रोलॉन्ग्ड जो जिसकी हम बात करें कि करेक्शन आ जाए, वैसा मार्केट में रुख नहीं देखा गया।
2: लेकिन इसका असर अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उस पर भी काफी क्षेत्रों में नजर आने लगा है, ऐसा आपको लगता है?
1: ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी नंबर है अभी भी बहुत अच्छे से एंटिसिपेटेड है। वी विल ग्रो मोर देन 7% इन द करंट ईयर ऑल्सो, दैट इज द एस्टिमेट, दो मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव प्रोवाइडेड 6.5-7%, 6.5-7% के बीच में तो बहुत सारे अनुमान है। और इसके अलावा जो जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, एक्सपोर्ट्स बहुत स्ट्रांग है, आईपी नंबर स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन एक स्टेबल ट्रैजेक्टरी में है, तो ऐसी जो वॉलेटाइल न्यूज है वो एक दिन दो दिन के लिए मोमेंटली कुछ ऐसी वॉलेटाइलिटी भय पैदा करती है, लेकिन जो जो अगर हम बात करें कि शॉर्ट टर्म में एक महीने में दो महीने के अंतराल में मार्केट्स एक स्टेबल लेवल पे ही बिहेव कर रहे हैं,
2: तो यानी निवेशकों को इस पॉइंट पर आकर के घबराने की जरूरत नहीं है?
1: जी बिल्कुल नहीं, मैं ये कहूंगा कि खास करके जो रिटेलर है उसको ऐसे मूवमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए, अगर वो इन्वेस्टेड है तो रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ना कि ऐसे पैनिक में आके अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रॉ करे, क्योंकि मार्केट्स देखा गया है जो ट्रेंड है, मार्केट्स अगर गिरावट आती है तो बहुत शार्पली रिकवर करती है।
0: सो हाउ शुड इंडियन पॉलिसी मेकर्स एंड इन्वेस्टर्स हेज अगेंस्ट अ जियोपॉलिटिकल ऑयल स्पाइक?
1: I believe this is very good question, because we have observed significant volatility in the crude oil prices. The prices are prevailing in the trajectory of 50, more than 50-60%, like $55 per barrel to more than $100 per barrel. So there are major corrections also, crude decelerates sometimes to the level of 70, somewhere 70-75. So we have opportunity, when there is a great correction in the crude oil prices, then we should build our inventories, build our stocks, so that the future trajectory remains strong and we are not... should be... operating on more than 100 days as okay. Like many other countries.
0: Global crude oil prices declined over 3% today. Brent crude was trading 3.4% down at $89.01 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.6% lower at $81.94 per barrel when reports last came in. Aswi, why has the oil fallen despite fresh U.S. sanctions on Iran?
1: Because when there are sanctions, the demand trajectory or the business activity will be impacted. So, anticipating the lesser demand for the fuel. So, that's why when there is some negativity at the global level, then the speculation or spikes also not work that much strongly. So, that is the, I believe,
0: reason
1: for this.
0: So, if the price remains at this level that we are talking about, how does that change your outlook for India's inflation?
1: My outlook for India's inflation will remain stable. Inflation will remain विद इन दी आरबीआई बैंड. दो क्रूड प्राइसेस मे प्रिवेल समवेयर बिटवीन $90 to $100, बट स्टिल वी हैव आवर सप्लाई चेन वेरी स्ट्रांग एंड there will not be any impact on the inflation trajectory, and growth is already resilient, and our fundamentals are very strong to support the growth trajectory.
2: Okay. श्रोताओं, सराफा बाजार में सोना आज मामूली गिरावट के साथ 1,62,041 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 1.4% गिरकर 241,848 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. एसपी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर शर्मा. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices rise, Sensex jumps nearly 300 points, Nifty settles above 24,300. Prime Minister Narendra Modi hails UPI as a major turning point in India's digital payments journey, says it is a source of pride for every Indian. And global crude oil prices decline around 3%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaste.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब समय है गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम का, जिसमें हम सुनवाते हैं आपको सुनहरे दौर के सदाबहार गीत, वो भी बिना रुके। तो चलिए शुरू करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट

0: पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: आज दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकट, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। भारत ने कल भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। पेचिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ, साथ ही सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों के जरिए सीमा व्यापार सहित लोगों के बीच बढ़ते संपर्क पर संतोष व्यक्त किया। इससे पहले 2 दिवसीय चीन यात्रा के दौरान श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने H1N1 इन्फ्लुएंजा, डेंगू और मलेरिया की स्थिति को लेकर अंतरविभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बीमारी की स्थिति, निगरानी, अस्पतालों की तैयारियों, दवाओं और जांच सुविधाओं की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने MCD, NDMC और दिल्ली छावनी को स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास एंटी लार्वा अभियान छिड़काव और छिड़काव तेज करने के निर्देश दिए। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned a global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on 25th of August 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to countries' private defence industry to bolster indigenous manufacturing.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपके साथ सुरभि और मैं लेकर हाजिर हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी आंखों से गुजरकर दिलो जा में आना, मेरी आंखों से गुजरकर दिलो जा में आना, जिस्म में ढल के मेरी रूह रवा में आना। इश्क ने देख लिए हुस्न में आफाक तमाम, इश्क ने देख लिए हुस्न में आफाक तमाम, एक सकते का वो उम्रे गुजरा में आना, मेरी आंखों से गुजरकर दिलो जा में आना, जिस्म में ढल के मेरी रूहे रवा में आना।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जी हाँ, जब कभी इस खूबसूरत रात में आसमां से चांद चमकता है तो शायद उसे भी अपनी मोहब्बत पर नाज होता होगा। चांद की रोशनी, ठंडी हवाओं का एहसास और ऐसे में किसी की याद, इन सब के बीच रात और भी हसीन हो जाती है। कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ किसी के साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि कई बार दूर रहकर भी आप उसे अपने करीब महसूस करते हैं, ये भी मोहब्बत ही है। तो अगर आज की रात आपके दिल में भी किसी की याद दस्तक दे रही है तो उस याद को छुपाइए मत। कुछ पल आंखें बंद कीजिए और उस चेहरे को, उस मुस्कुराहट को याद कीजिए जो आपकी पूरी दुनिया को खूबसूरती से भर देती है। और चलिए, ऐसे में हम सुनवाते हैं आपको एक गीत रफी साहब की आवाज में। फिल्म है धरती।

मन की बात है जन जन की, सकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहतात 800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जी हाँ, कुछ लोग हमारे सामने होकर भी कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों का ठहरना उनकी बहुत सारे दिल की बातें बयां कर जाती हैं। उनकी मुस्कुराहट या फिर अचानक से आई कोई याद हमारे दिल को खुश कर जाती है, और उस वक्त वो छोटे छोटे इशारे याद आते हैं जिससे मोहब्बत अपना पता छोड़ जाती है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक इशारा ही काफ़ी होता है, और जिसे समझना होता है वो इशारे से भी समझ जाता है, खामोशी से भी समझ लेता है। तो चलिए, जब बात इशारों की हो रही है तो इशारों ही इशारों में सुन लेते हैं रफ़ी साहब और आशा भोसले को कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत में।

रात के खामोश पहर में जब शहर की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, तब कुछ यादें और साफ सुनाई देने लगती हैं। कभी किसी खास शख्स की मुस्कुराहट यूं ही ख्यालों में आ जाती है, बिना दस्तक बिना वजह। शायद एहसास लफ्जों के मोहताज नहीं होते, बस एक सुकून दे जाते हैं। तो चलिए अपनी आंखों को जरा बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए उस खामोशी को, उस याद को, उस मुस्कुराहट को जिसमें किसी की मौजूदगी शामिल होती है। और अब उसी एहसास को थाम कर रखिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसा ही गीत जिसे सुनकर आपके लबों पर मुस्कुराहट आ जाएगी।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। हर रात का एक मिजाज होता है, दिन की भागती दौड़ती जिंदगी में जिन बातों के लिए वक्त नहीं मिलता वही बातें रात की खामोशी में न जाने क्यों याद आने लगती हैं। कोई पुराना चेहरा, एक अधूरी सी मुलाकात या फिर किसी की कही हुई वो छोटी छोटी बातें जो बरसों बाद भी दिल में कहीं ठहरी होती हैं, छुपी होती हैं। और जब हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत या गाने तब वो पुराने खूबसूरत एहसास अचानक उभर आते हैं। शायद ये धुन हमें या आपको एक ऐसे ही शख्स की याद दिला देती है जिसे याद करने के लिए वैसे तो किसी वजह की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं है।

जब कोई पुरानी याद चुपके से पास आकर बैठती है और शहर की आवाजें धीरे पड़ जाती हैं और रात का सुकून भरा पहर होता है, ऐसे में दिल की बातें कुछ ज्यादा याद नहीं आने लगती। कभी सोच कर देखिए आप, कभी अकेले बैठ कर देखिए आप, तब आपको कोई चेहरा, कोई मुलाकात या किसी के आवाज, किसी की स्वर आपको जरूर सुनाई देंगे। और उस वक्त हम मुस्कुरा कर सोचते हैं कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते बल्कि खामोश हो जाते हैं। कैसी खूबसूरत थोड़ी सी अधूरी सी कहानी के नाम, चलिए सुनते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने कार्यक्रम में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है।

0: पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा सहयोग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये इस मुद्दे पर 6वीं बैठक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया या निष्क्रिय कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को चेतावनी दी गई है कि नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी भी जहाज या नाव को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ सुरभि। मैंने कब चाहा कि मैं उसकी तमन्ना हो जाऊं, मैंने कब चाहा कि मैं उसकी तमन्ना हो जाऊं, ये भी क्या कम है कि उसको गवारा हो जाऊं। मुझको ऊंचाई से गिरना भी है मंजूर अगर, मुझको ऊंचाई से गिरना भी है मंजूर अगर, उसकी पलकों से जो टूटे वो सितारा हो जाऊं। मैंने कब चाहा कि मैं उसकी तमन्ना हो जाऊं, ये भी क्या कम है अगर उसको गवारा हो जाऊं।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कहते हैं कि रात जितनी खामोश होती जाती है, दिल उतनी ही साफ तरीके से और साफ आवाज में पुरानी बातें सुनने लगता है। एक चेहरा याद आने लगता है, किसी की बातें, किसी की हंसी कानों में उतर आती हैं। शायद खूबसूरती है यादों की ये सब। वो आती हैं तो कोई दस्तक नहीं होती, बल्कि बहुत ही खामोशी से चुपचाप पास बैठ जाती हैं, जैसे बरामदे में रखी कुर्सी पर आकर कोई अपना बैठ गया हो और हम बिना कुछ कहे बस उसके साथ उस बीते हुए वक्त को महसूस करने लगते हैं। और मोहब्बत भी शायद ऐसी ही चीज़ है, क्योंकि हमेशा इजहार की ज़रूरत नहीं होती। कभी किसी की खामोशी में उसका ख्याल मिल जाता है और कभी किसी रास्ते से गुजरते हुए अचानक ही उसकी याद आ जाती है, और कभी रात के सन्नाटे में दिल बस इतना चाहता है, इतना ही कहता है कि काश काश वो इस वक्त यहाँ मौजूद होता या मौजूद होती। तो अगर आपके पास भी वो ख़ास इंसान इस वक्त नहीं है जो आपसे दूर है, लेकिन आपके दिल में है, आपकी यादों में है और आपके आपके पास मौजूद रहता है हमेशा, तो ये जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस गीत को सुनकर आप उसे एक बार फिर से याद कर बैठेंगे। जी हाँ, फिल्म है दिल एक मंदिर, लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं ये गीत।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और चलिए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हिमालय की गोद फिल्म से ये गीत। जिसे आवाज दी है मुकेश साहब ने।

जैसे कभी कभी मौसम बदलते हैं, ठीक वैसे ही रिश्तों में भी ना ये मौसम बदलता है। बात वही रहती है, इंसान वही होते हैं, लेकिन लहजे में थोड़ी सी दूरी आ जाती है। कोई अपना रूट जाए तो घर वही रहता है, शाम वही रहती है, लेकिन न जाने क्यों सब कुछ अधूरा सा लगता है। और ऐसे वक्त में मन यही सोचता रहता है कि आखिर नाराजगी किस बात की है, और वो छोटी सी मुस्कान फिर कब लौटेगी। शायद मोहब्बत की खूबसूरती भी यही है कि रूठने में भी एक अपनापन छुपा होता है। तो चलिए ऐसा ही एक नगमा आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर मन की जो खटास है वो दूर हो सकती है, फासला थोड़ा कम हो जाना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत सी धुन है, बहुत ही प्यारा सा ये गीत है, फिल्म है शागिर्द, रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं ये गीत, वो है ज़रा खफा खफा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने, और चलिए गीतों की इस बहुत ही खूबसूरत सी महफिल में अब अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है किस्मत, और गीत को आवाज दी है आशा भोसले और शमशाद बेगम ने।

कुछ गीत अपने संगीत की वजह से याद नहीं रहते, बल्कि वो अपने साथ एक पूरा समय लेकर चलते हैं। और कुछ गीत उस दौर की सहजता, रिश्तों की गर्माहट, प्रेम की मासूम शरारतों को भी लेकर चलते हैं। कुछ गीतों में लोक संगीत की मिट्टी की खुशबू भी शामिल होती है, जिसे हम जब भी सुनते हैं वो हमें हमेशा एक नया ही लगता है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्री एस्टेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल

0: मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी देती है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह इस मुद्दे पर छठी बैठक थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत के मामले में गुजरात के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार अवैध शराब में बड़ी मात्रा में मेथनॉल मिलाया गया था और इसे एक लोकप्रिय ब्रांड के नकली लेबल वाली बोतलों में बेचा जा रहा था। भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 2026 के 14वें चरण में विक्रांत पांचाल ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ का खिताब जीत लिया है। एथलेटिक्स सीरीज का अगला चरण 2 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मेरठ में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Siva Tirth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon ministry, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors, spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. India highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the 2 countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the Special Representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry said in a statement that the 2 representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The 2 sides noted the progress made in implementing the important consensus reached between their leaders in Kazan in October 2024 and Tianjin in August last year. Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security, addressing the concluding session of National Security Strategies Conference in New Delhi. Mr. Shah said, strong internal security is essential to achieving Prime Minister Narendra Modi's vision of a Viksit Bharat by 2047. The minister said, government has successfully eliminated issues of narcotics, Naxalism and the challenges in the Northeast. He credited state police, central agencies and CAPFs for these achievements. The Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The Delhi government has informed that more than

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई। खराब दर्द हुए गम परिस्थिति में रहे, खुशी की खोज बहाना थी मस्तियों में रहे। हर एक से झुक के मिले यूं कि सरफराज हुए, अजब मजाक से हम घर की गृहस्थियों में रहे। खुशी की खोज बहाना था मस्तियों में रहे।

जब हम कोई गीत सुनते हैं तब हमारे मन में गीत और संगीत के साथ साथ कुछ भावनाएं भी साफ सुनाई देने लगती हैं, और इंतजार उन्हीं एहसासों में से एक है जहां वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है लेकिन ये मन किसी एक पल पर रुक जाता है, ठहर जाता है। किसी खास कयामत की उम्मीद, उसकी आहट का ख्याल और इस भरोसे का बना रहना कि दूरी चाहे जितनी हो, मुलाकात कभी न कभी जरूर होगी। तो इंतजार और मोहब्बत की उम्मीद को बड़ी ही खूबसूरती से पिरोता है हमारा अगला गीत। जी हाँ, चलिए आपको सुनवाते हैं यलगार फिल्म का ये गीत, उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कुछ रिश्तों की अहमियत उनकी मौजूदगी में कम और उनकी कमी में ज्यादा महसूस होती है। कोई अपना पास ना हो तो जिंदगी रुकती नहीं है, बल्कि जिंदगी के मायने थोड़े से बदल जाते हैं। वही दिन, वही रातें, वही शाम, वही रास्ते, लेकिन पता नहीं क्यों ये मन उसी व्यक्ति को, उसी इंसान को ढूंढता रहता है। शायद मोहब्बत का सबसे सच्चा रूप यही है कि जब वो दूर हो जाता है, फिर भी उसका ख्याल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साथ चलता रहता है। और ऐसे में कोई धुन अगर कानों में पड़ जाए तो उसकी याद आ जाती है, या फिर कोई जगह देखते ही उसका जिक्र मन में उतर आता है। इसी खामोशी, इसी कमी और गहरे लगाव को पेश करता है ये गीत।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करें। पूरे होंगे अपने अरमां किस तरह, पूरे होंगे अपने अरमां किस तरह, शौक बेहद वक्त है कम क्या करें। बख्श दें प्यार की गुस्ताखियां, बख्श दें प्यार की गुस्ताखियां, दिल ही काबू में नहीं हम क्या करें। दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का गम क्या करें। बख्श दे प्यार की गुस्ताखियां, दिल ही काबू में नहीं

ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा। अपने दिल को भी बताऊं न ठिकाना तेरा, सबने जाना जो पता एक ने जाना तेरा। ये समझकर तुझे ए मौत लगा रखा है, काम आता है बुरे वक्त में आना तेरा। ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा।

और इसी गीत के साथ रात सुरभी का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। इसी के साथ नमस्कार, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि

0: नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये इस मुद्दे पर छठी बैठक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया है या निष्क्रिय कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को चेतावनी दी गई है कि नई बारूदी सुरंग बिछाने वाले किसी भी जहाज या नाव को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के सेंट लुइस में प्रज्ञान नंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Seva Teerth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon ministries, states, and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road, and power sectors, spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. India highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the Special Representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry said in a statement that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made in implementing the important consensus reached between the leaders in Kazan in October 2024 and Tianjin in August last year. The government is closely monitoring the prevailing seasonal respiratory illness trends across the country through a robust pan-India surveillance network. It stressed that there is no cause for panic or alarm. Secretary of the Department of Health Research and Director General of the Indian Council of Medical Research, Dr. Rajiv Behl, said that the influenza viruses currently circulating in the country are consistent with the seasonal patterns observed in recent years. The Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The Delhi government has informed that more than 9,13,000 women have registered for the scheme so far, and over 6,52,000 applications have been finally submitted. The government said that the financial assistance will be credited directly to women beneficiaries' bank account from 1st of next month. Secretary Department of Consumer Affairs Nidhi Khare has said that Kanda Express is bringing about 800 metric tons of onions to Delhi. In a social media post, the secretary said the onion will be sold at 35 rupees.

रात की खामोशी में एक सदा आती है, हर एक याद बीते वक्त की हवालाती है। कुछ वादे जो गए थे राहों में कहीं, आज फिर ये शब उन्हें दोहराने आती है। जी हाँ, रात का ये सुकून और इसी गहरी खामोशी में उभर कर आती है वो बातें, वो वादे जो हमने कभी किसी से किए थे, या हमसे किसी ने किए थे, या फिर हमने खुद से किए थे। कुछ वादे जो उम्र भर निभाए गए और कुछ जो वक्त के साथ अधूरे रह गए। तो आइए इस प्यारे से वादों और यादों की दुनिया में रूबरू होते हैं हम और आप हमराही कार्यक्रम में, जिसमें अनमोल वादों की, यादों का खजाना गीतों की जुबानी आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इस सफर पर आपके साथ रहूंगी मैं, आप ही की दोस्त, आप ही की हम सफर, रूपा धवन। नमस्कार। तो तैयार हैं आप इस वादे के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे जब तक हम रहेंगे? इसी वादे के साथ हम भी आपके साथ हैं और सुनवाएंगे आपको बेहद ही खूबसूरत से गीत वादे शब्द पर। तो जुड़े रहिए इसी तरह और सुनते रहिए बहुत ही मधुर मधुर तराने हमराही के सफर पर।

साथियों, दिन की रोशनी में हमारा दिमाग बस सिर्फ चारों ओर के शोर में और जिम्मेदारियों में उलझा रहता है, पर रात जब गहराती है तब कमरे की खामोशी एक आईने की तरह काम करती है। उस आईने में बहुत सारी बातों और वादों की तस्वीर अचानक से उतर आती है और हम उन्हीं ख्यालों में खो जाते हैं जिसमें वादों का और बातों का सिलसिला होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम हमराही।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 3:29 और 7 सेकंड। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ हमराही कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं वादों से रचे गए गीत। और जनाब, वादे कुछ ऐसे ही होते हैं जिसमें कुछ इस तरह की भावनाएं होती हैं। ना चांद की चाहत, ना तारों की फरमाइश, तेरे चेहरे पर मुस्कान रहे, बस इतनी सी है ख्वाहिश। जिंदगी के हर मोड़ पर तेरे साथ खड़ा रहूं, आज इस दिल की भी बस यही है आखिरी गुजारिश।
1: वादा?
2: हाँ वादा।

एक वादा हवाओं से किया था, एक वादा हवाओं से किया था कि तुम जब भी आओगी उसकी खुशबू लाओगी। एक वादा रातों से किया था कि तुम जब भी आओगी गहराओगी उसके दिए ख्वाब लाओगी। वक्त बीत गया, मौसम बदल गया, कुछ इंसान दूर हुए, कुछ रास्ते बदल गए, पर इस शब की खामोशी में आज भी वही वादे पुराने मेरे साथ नए बनकर ढल गए।

साथियों, अक्सर रात को कोई पुरानी किताब सिराहने रखी या तकिया, खिड़की से आती ठंडी हवा या सिर्फ आपकी बंद आंखें ही चाबी बन जाती है। इसी वक्त वो पुराने वादे सामने आकर खड़े हो जाते हैं।

कभी कभी मोहब्बत में इंतज़ार, निसार, दोस्ती, वफादारी जैसे भावों और जज्बातों को निभाने के बाद भी हमें धोखा ही मिलता है। सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसमें धोखे का एहसास भी है और वादे का एहसास भी है। इस एहसास को अपने स्वरों से पिरोया है किशोर कुमार साहब ने। फिल्म है दुश्मन और गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

वादा सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि दिल से भी निभाए जाने वाला एहसास होता है। सबसे प्यारा वादा वो है जो बिना कहे आंखों से निभाया जाता है। कारवां फिल्म का ये गीत आप सभी सुन रहे हैं रफी साहब और लता जी के स्वर में।

रात ढल रही है पर यादों का चिराग जलता रहेगा, वादा रहा फिर मिलेंगे ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ फिलहाल रूपा विदा लेती है। 4:10 पर फिर से आपके साथ रहूंगी अरुणिमा कार्यक्रम में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिवसीय दौरे पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भारत के महावाणिज्य दूत महावीर सिंघवी ने उनका स्वागत किया। इस दौरे के दौरान वह कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इस वार्ता में दोनों देश आर्थिक स्थिति, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, निवेश और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वित्त मंत्री अमेरिका के लिए रवाना होंगी, जहां वह G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह इस मुद्दे पर 6वीं बैठक थी। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित यह पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका भी भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आपका अपना साथी, अपना दोस्त सदाबहार, आपका चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां रात का गहराया अंधेरा धीरे धीरे हटकर उजले सूरज की किरणों को अपनी आगोश में पनाह देने की तैयारी कर रहा है। और ये वक्त है अरुणिमा का, 4:11:38। अरुणिमा में आपके साथ रहूंगी मैं, आप ही की हम सफर, आप ही की अपनी, आप ही की अपनी दोस्त रूपा धवन। नमस्कार।

आपने देखा ही होगा, जो पौधे पानी और धूप पाते हैं वही फूल खिलते हैं। ठीक वैसे ही इंसान भी वही व्यवहार दोहराता है, जिसे सराहा जाता है वो खूब तरक्की पाता है, मन की शांति पाता है और हर क्षेत्र में विजय को प्राप्त करता है। आशाओं और निराशाओं के दामन से लिपटा हुआ आदमी, उसकी जिंदगी में जब निराशाएं आती हैं तो वो हताश नहीं होता, बल्कि अपनों का साथ पाकर हमेशा आशा का दामन थामता है और थामकर हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी के रास्तों पर चलता है।

किसी को भी गलतियां गिनाना आसान होता है, पर किसी के छोटे प्रयास को पहचान कर उसे आगे बढ़ाना ही असली समझदारी है।

साथियों, सफलता पाने के लिए जब हम सच्चे दिल से प्रयास करते हैं, तब नतीजे का इंतजार न करके अपनी तरफ से हम बार बार सफलता पाने के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें हम सफल भी हो जाते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। और जब सफलता हमें मिल जाती है तो ये खुशियों को दोगुना कर देती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 4:36 और 7 सेकंड। आप हैं अरुणिमा कार्यक्रम में अपनी दोस्त रूपा के साथ और हम बातें कर रहे हैं सकारात्मक विचारों की। कभी कभी हमें गिराने वाले इंसान वरदान बन जाते हैं जो हमें और भी मजबूत और समझदार बना देते हैं। और जिंदगी में ऐसे दोस्तों का होना भी जरूरी है। दोस्त क्यों ना कहें उन्हें, जो हमारे जीवन में मजबूती देते हैं, हमें एक तरह का सहारा देते हैं समझदार बनने का। तो वास्तव में तो हमारे लिए वही दोस्त हुए ना। तो ऐसे दोस्त भी जिंदगी में होने चाहिए।

दोस्त हमें हमारी खूबियां बताते हैं ताकि हमारा हौसला बढ़े, और कुछ लोग हमारी कमियां ढूंढते हैं। पर ये कमियां भी ढूंढने हैं जब, तो इन कमियों पर जब हम नजर डालते हैं तो हम अपने आप में बेमिसाल बन जाते हैं। तो कमियों से घबराएं ना, बल्कि उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें ताकि आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें।

में सच्चे दोस्त ही बता पाते हैं, या फिर हमारे आदर्श हमें जीने की राह देते हैं जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। खुद पर विश्वास हमारे मन को मजबूत बनाता है, जो हमारे विचारों को और भी ज्यादा समृद्ध करता है। वक्त हुआ है इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 4:44 और लीजिए हो गए 45 मिनट और 3 सेकंड। आप है रूपा के साथ अरुणिमा के सफर पर।

किसी के द्वारा झूठे सपनों में ना जीकर खुद पर यकीन करके जब हम जिंदगी की नाव पर सवार होते हैं, तब वो यकीन हमारे सपनों को संवार

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।